दरबार विच बैठे साईं मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रवे, फिर भी उसके हुक्म विच रवे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझ बाणी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, साईं मियां मीर समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हैं, जो अखर उचारे हैं, इन्हां ते अमल भी करके दसांगे। ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है। ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तों अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने कहा, अच्छा। जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है। तां चंदू दीवान जिस नूं अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं कीता। गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले बोल बोले ते एक गल संगत नूं पता लग गई, तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी, गरीब निवाज इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना, क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं। ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ये तो मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्होंने, गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता, इन्हों अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हाँ, ते मैं इन्हों दे नाल की कुछ कर सकता। तो फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ। अंतर जामी गुरु अर्जन देव पातशाह तो सब कुछ जानते सन, जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तो कुछ प्यार वाले नाल तुर पए। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की, गरीब निवाज किथे तुरे हो, आख्या बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नू चले हैं, किसे जरूरी काम नू चले हैं। ता बाबा बुढ़ा जी ता ब्रह्म ज्ञानी सन, जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नू चले हैं साहब जी, ता की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे होए। पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां, तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बाबा जी ए राज राज ही रहन देना, खोलना नहीं। गरीब निवाज चले हो, एक वरां मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ, जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਭਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ

कुछ दूरी तक साहब जी नाल गईयां। चारे पासे संगतां दी अखां विच आंसू हन। साहब जी कहन लगे, बस सात संगत तुसी हुण इत्थों वापस चले जाओ ते साडे नाल कुछ प्यार वाले अगे जाणगे। ते जिस वक्त गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर पहुंचे तां चंदू दीवान जो अहंकार दे मद विच सी कि मैं राजे दा दीवान हाँ, बादशाह जहांगीर दा दीवान हाँ, पहले तो गुरु अर्जन देव जी नूं किया कि ए रिश्ता आप गुरु हरगोबिंद जी दा मेरी लड़की नाल कर दिओ तां मैं सारे सुख तुहानूं देंगा। तां गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे, चंदू मैं संगत दा हुक्म मोड़ नहीं सकदा। संगत दा हुक्म है, साध संगत दा हुक्म है, ए रिश्ता तेरी लड़की दे नाल गुरु हरगोबिंद जी दा नहीं हो सकता। तू सुख दे दुख दे ए तेरे हाथ नहीं, ए तां अकाल पुरख दा भाणा है। तां चंदू पापी ने अपनी हवेली विच जिथे तत्ती लो अंदर लाई हुई है, अग बल रही है, तले ऊपर तवा लाल होया पे, आख्या फिर जे ए रिश्ता कबूल नहीं करना ता ए तत्ती लो ते बहना पवेगा। साहब जी कहन लगे, जे अकाल पुरख दा पाना इवी है ता तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ता गुरु अर्जन देव पातशाह आप अकाल पुरख वाहेगुरु नूं नमस्कार करके ते तत्ती लो ते चौकड़ा मार के बह गए। सात संगत बोलो श्री। ते फिर ऐसी अडोल बैठे। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, ते चंदू पापी अजे भी मन एदा ठरिया नहीं। आख्या रेत तपाओ, रेत तपाई पड़पूंजे नूं सदिया, जो दाने पुंदा सी कि तू अपने कड़छे भर भर के गर्म रेत लैके अर्जन दे सिर विच पा। साथ संगत बोलो श्री। तलों तत्ती तवी अग बल रही है, उत्तों गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं। ते साहब जी दे जदों भी बुल फुरकदे हैं तां विच्चों एही आवाज आउंदी है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साईं मियां मीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हैं, जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गए कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हैं, उत्ते गर्म रेते पै रहे हैं। ता हाथ जोड़ के बेनती कीती, गरीब निवाज एक ही पाना है। साहब जी कहन लगे, साईं मियां मीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ के जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। ता आवेख लै अग्न विच शरीर जल रहा है, तन तप रहा है, मन शांत है हरी नाम से। अंदर परमेश्वर दा नाम वसया, अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नूं, आ शरीर नूं क्या दुख देवेगा ए चंदू। साईं मियां मीर जिसने हरबंदर साहब दी नीह रखी सी, जात दा मुसलमान सी, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी, ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मियां मीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया तां नींव हरमंदर साहब दी मियां मीर पासों रखाई कि ए सांझी वालता दा घर है, गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है। मियां मीर ने बेनती कीती, गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे, शक्ति नहीं दिखांदे तां मैनूं हुक्म करो, मैं दिखावां। साहब जी कहन लगे, मियां मीर करना वड्डी गल नहीं है, जरना वड्डी गल है,
ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ

गुरु मेरे संग सदा है ना। ते फिर जिस वेले आख्या गुरु अर्जुन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिद्धक वाले, उतने ही सिख सिद्धक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तो साहब जी कहन लगे चंदू साडा मन करदा है असी इशनान करिए। तीन दिन हो गए हैं चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जेडे नाल आए सन उन्होंने बुलाओ। वो प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नू प्यार नाल जिस वेले रावी दे किनारे ते लियाए, साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समा आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे ते जपजी साहब दा जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच ते तुसी वापस हरिमंदर साहब अमृतसर चले जाणा। ते ए सब नू आखणा कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख दे पाणी विच रह के उसके हुक्म विच अपना सिर नवाया। ते जप जी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी ते जिस वेले जप जी साहब दा भोग पाया जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल नानक दे मुख उजले गेती छिट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास, मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै,

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

का सरहन सरसा नदी तो विछड़ के माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादे मुगल सरकार की कैद विच साका सरहन।

के सानू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जदों गुरु दे लड़ लाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का लड़ पकड़ाया ते समझाया सी, सरबत का भला करना है, दूजियां का धर्म बचाना है। आ एक दिन फिर चौथी वार अबदाली ने हिंदुस्तान ते हमला किया है। आगरा ते मथुरा शहरां दे विच इहदे सिपाहियां ने लुट मचा दी, मंदरां विचों कीमती जेवर चुरा लए। किड्डा पापी है, भगवान दीयां मूर्तियां तो भी मुक्त लाई जांदा, होर भी घोर पाप करदा है। घरां विचों कीमती समान भी लुट लिया ते नौजवान बहु बीबियां नूं भी बेटियां नूं भी पकड़ के गड्डियां विच बिठा के इहदे सिपाही लै चले। सतसंगियो, बीबियां ने हाल दुआई मचाई है, किसे ने भरा नूं आखिया वीरा मैं तेनू लकड़ी वधे सी, किसे ने बाप नूं आखिया बावला मैनू रख लै, पर अबदाली दियां फौजां अगे किसे दा जोर नहीं चलदा। कीमती समान ते बीबियां नूं बच्चियां नूं गड्डियां ते लद्दिया तुर पिया है। जदों पुजा मारकंडा दरिया दे कोल शाहबाद दे नेड़े, इत्थे जंगल दे विच बाबा दीप सिंह दी अगुवाई हेठ कुछ सिंह जंगल विच बैठे ने, प्रशादा छकन लगे ने। दो सिंह पानी लैण वास्ते गए ने, सिंघां ने की तकिया, भई आ गड्ढे ते की जा रहा है, इन्ने बड़े गड्ढे तोड़ उड़ती जा रही है, ये की जा रहा है। इन्हें नूं एक बीबी ने सिर तां चुकिया ते सिंघां वल देख के हाल दुआई मचाई, ओए गुरु दे सिंघो, तुहानू गुरु दा वास्ता, सानू इन्हां लटेरियां कोलों बचा लो, बचा लो सानू इन्हां लटेरियां कोलों। सिंघां ने इस बीबी दी आवाज सुनी, समझ गए ने, जाके सारी गल बाबा दीप सिंह जी नूं दसी। बाबा जी ने आख्या, खालसा जी प्रशादा नहीं छकना, साडे लई प्रशादा छकना हराम है, हिंदुस्तान दी लाज गड्डियां ते लदी जा रही है, तां प्रशादा छकांगे जे असी इज्जत बचा लवांगे। अज सूरमिया ने हथां विच कृपाना पकड़ियां, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का ध्यान तरिया, जयकारिया की बुलंद आवाज दे विच अबदाली की फौज ते हमला कर दिता है।

बाबा नामदेव जी नाम जपद्या जपद्या ऐसी बिरती आप दी ब्रह्म ज्ञानिया दी अवस्था प्राप्त हुई के ठाकरा दे इशनान करन ले जल परन गए ते मन विच ख्याल आया भई 42 लख जी जल में होते बीठल पैदा काहे करो। 42 लख जून जल विच है, 42 लख जून इस तरत आकाश ते है, हुन बीठल नू मैं वखरा किवें भोग लवावा। हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जिथे किथे तू ही तू है, कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु।

राज बाजे सभंग शीश ते संग श्री काल नाचे करे कोट को उतरे कोट ओटन बचे गो न क्यों करे काल चोटन लिखे जंत्र के ते

गाह सूफी गाह जाहिद गाह कलंदर में शबद रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत अंत न पावत देव सभे मुन इंद्र महाशिव जो करे तू बेअंत अत ऊंचा ता का दरबारा।

सिमरन करता है जगयासु, फिर वाहिगुरु हमेशा इहदे अंग संग हुंदा है। उन्ना चिर ही ठोकरां पैंदियां ने जिन्ना चिर असी उन्हूं विसार दईए। महाराज कहिंदे ने दुख तदे जां विसर जावे, पर जे उहदा सिमरन करिए, नाम जपिए, ते ओह हमेशा हर जगह सहाई हुंदा है। जिवें गुरु पातशाह कह रहे ने,

कि परमेश्वर का जद मिलाप हुंदा है फिर इंसान की अवस्था की हुंदी है और परमेश्वर का मिलाप गुरु करांदा है और

तीन बंधां विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है। जगत दे जी जंत मानो उस रुख दियां बेअंत डालियां टहणियां हन, जो फुल्लां पत्तरां ते रस भरे फलां नाल लदियां होईयां हन। इह संसार अमृत दी इक बगीची है, जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें इक पौरा फुल दे रस विच मस्त हो के फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें उह गुरमुख नाम रस विच मस्त हो के पूर्ण खड़ाऊ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच

मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उग्या होया एक कोमल बूटा देखिया। साध संगत, ए ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नू जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए ते फिर ओ इंसान की

मेरा परमेश्वर मिल गया। देह कहते ने शरीर में जिदे मिलन दे नाल मेरी देह सुहावनी हो गई है। किस तरह?

कृपा की थी ज्ञान अंजन अंजन कहंदे ने सुरमा गुरु ने ज्ञान का ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल की सोझी हो गई राम नाम तो बगैर जीवन

तृष्णा रूपी जल सूख गया, मन की हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन में पैदा होती है, हर इंसान भज रहे जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहे पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे। सुख बहुती माया विच भी

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओ ही उपदेश।

इतना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच होंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावा अपनी सुख वास्ते दूसरे का हक खाना दूसरे नु दुख देना यह है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान यह है कि भाई सारे विच परमेश्वर है सारे विच खुदा है वाहेगुरु है जे सारे विच वो है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोची

परमेश्वर की कहानी का पता नहीं लगता। गुरु परमेश्वर की कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेडे गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नू जान लैंदे ने कि सारे विच

किन्ही निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा, किन्ही ग्रह तजवन खंड पाया, किन्ही मोन अवधूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती।

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तर भव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी परत्र्य त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैश पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।

बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच का

गोविंद ना भजे अहम बुध माता जन्म जुए ज्यो हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन ते डारे मोढ़े वस्त्र का

दरबार विच बैठे साईं मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रवे, फिर भी उसके हुक्म विच रवे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझबानी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, साईं मियां मीर, समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हन, जो अखर उचारे हन, इन्हां ते अमल भी करके दसांगे। ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू, जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तो सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है। ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वार सब तो अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज ने कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने क्या अच्छा, जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नू जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है, तां चंदू दीवान जिसनू अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं कीता। गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले ते ए गल संगत नू पता लग गई, तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी, गरीब निवाज, इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना, क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं। ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्हां ने, गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता, इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा। तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ। अंतर जामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानते सन, जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती कीती, गरीब निवाज किथे तुरे हो, आख्या बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नू चले हैं, किसे जरूरी काम नू चले हैं। तां बाबा बुढ़ा जी तां ब्रह्म ज्ञानी सन, जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नू चले हैं साहिब जी, तां की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे हुए, पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां। तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बाबा जी ए राज राज ही रहन देना, खोलना नहीं, गरीब निवाज चले हो। एक वरां मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ, जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन,
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਭਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

कुछ दूरी तक साहब जी नाल गईयां। चारे पासे संगतां दी अखां विच आसू हन। साहब जी कहन लगे, बस सात संगत तुसी हुण इत्थों वापस चले जाओ ते साडे नाल कुछ प्यार वाले अगे जाणगे। ते जिस वक्त गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर पहुंचे तां चंदू दीवान जो अहंकार दे मद विच सी कि मैं राजे दा दीवान हाँ, बादशाह जहांगीर दा दीवान हाँ, पहले तां गुरु अर्जन देव जी नूं किया कि ए रिश्ता आप गुरु हरगोबिंद जी दा मेरी लड़की नाल कर दिओ तां मैं सारे सुख तुहानूं देंगा। तां गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे, चंदू मैं संगत दा हुक्म मोड़ नहीं सकदा। संगत दा हुक्म है, साध संगत दा हुक्म है, ए रिश्ता तेरी लड़की दे नाल गुरु हरगोबिंद जी दा नहीं हो सकदा। तू सुख दे दुख दे ए तेरे हाथ नहीं, ए तां अकाल पुरख दा भाणा है। तां चंदू पापी ने अपनी हवेली विच जिथे तत्ती लो अंदर लाई हुई है, अग बल रही है तले, ऊपर तवा लाल होया पे, आख्या फिर जे ए रिश्ता कबूल नहीं करना तां ए तत्ती लो ते बहना पवेगा। साहब जी कहन लगे, जे अकाल पुरख दा पाना इवीं है तां तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तां गुरु अर्जन देव पातशाह आप अकाल पुरख वाहिगुरु नूं नमस्कार करके

ते फिर ऐसी अडोल बैठे। एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, ते चंदू पापी अजे भी मन एदा ठरिया नहीं। आख्या रेत तपाओ, रेत तपाई पड़पूंजे नू सदिया, जो दाने पुंदा सी के तू अपने कड़छे पार पार के गर्म रेत लैके अर्जुन दे सिर विच पा। साथ संगत बोलो श्री। तलो तत्ती तवी अग बल रही है, उत्तों गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं, ते साहब जी दे जदों भी बुल फुरकदे हैं तां विच्चों एही आवाज आउंदी है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साईं मियां मीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हैं, जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गया कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हैं, उत्ते गर्म रेते पै रहे हैं। हाथ जोड़ के बेनती की, गरीब निवाज एक ही पाना है। साहब जी कहन लगे, साई मियां मीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ के जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। ता आवेख लै अग्न विच शरीर जल रहा है, तन तप रहा है, मन शांत है हरि नाम से। अंदर परमेश्वर दा नाम वसया, अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नु, आ शरीर नु क्या दुख देवेगा ए चंदू। साई मियां मीर जिसने हरमंदर साहब दी नी रखी सी, जात दा मुसलमान सी, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी, ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मियां मीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया तां नींव हरमंदर साहब दी मियां मीर पासों रखाई कि ए सांझी वालता दा घर है, गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है। मियां मीर ने बेनती की, गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे, शक्ति नहीं दिखांदे, तां मैनू हुक्म करो, मैं दिखावां। साहब जी कहन लगे, मियां मीर करना वड्डी गल नहीं है, जरना वड्डी गल है, शक्ति होंदियां होयां जर लैणा ए वड्डी गल है। तां उपर वेख गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या, हजरत मियां मीर उपर तक जां उपर देखिया तां 33 करोड़ देवी देवता हाथ बन्ने खड़ोते हैं, गरीब निवाज सानू हुक्म कर, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह पाणी विच बैठे हैं।

ना परख होवे ते कोई कच कह देगा कोई पत्थर कह देगा। जिन्हों पता है हीरे का ओनू पता है ये दाना तो निका जे है टुकड़ा छोटा जे है मुल बहुत है। जितना वो कीमती है जिसे मुल पाया जावे घर भर जाने। सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदास जी गुरसिख पंथ दे श्रोमणी विद्वान धन गुरु नानक दे दर दे आनन सिख भावे असी नातेदारियां भी गिणने हैं गुरु अर्जन साहब दे मामा जी पर नहीं गुरसिखी विच ता नाता प्रेम दा है गुरु नू समझन ते गुरु नू मनन दा है। भाई साहब ने गुरु के बचन नू समझे अरे भाई साहब की रचना नू असी गुरबाणी की पूंजी भी कह देने हैं क्योंकि भाई साहब बाणी नू समझदे ने बाणी नू समझाउणा भी जानदे ते निरा समझन समझाउण दी गल नहीं कमाउणा भी जानदे। अपने जीवन विच भाई साहब ने गुरबाणी नू कमाया उन्हां नू पता है गुरबाणी दे किन्ने वड्डे महत्व ने। कहिंदे ने गुरु का सच्चा बचन इहदा महत्व शायद संसारियां नू पता ना लगे जिवें तली ते पए हीरे दा हर एक नू पता नहीं हुंदा। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿਕਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੌਹਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਘਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਦਾਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤਨਕ

श्रेय लगेगा, अगे ओ वधेगा, आत्मक उन्नति ओ करेगा जेड़ा गुरबाणी नूं खोजेगा, समझेगा, विचारेगा, अमल विच लियावेगा। कहिंदे ने ना कोई समझे, कसूर किसे होर दा तां नहीं। मिसाल भाई साहब ने बड़ी प्यारी दित्ती, कहिंदे ने समुंदर दीआं तहां विच पता नहीं कितना कुछ पिया। पहला तां समुंदर की गहराई नहीं पता लगदी, ते जो कुछ धरती ते उपलब्ध है ना, सवाए कुछ कुछ चीजां जिहड़ियां धुप ते खुशकी मंगदियां, बाकी धरती का सारा पदार्थ समुद्र के अंदर मौजूद है। सोना चांदी हीरे जवाहरात इथों तक कि इस वेले तो बंदा अपनी खाद खुराक के मामले में भी समझता ना, धरती तो पूरी ना हुई तो समुद्र दियां तहां विच बड़ा कुछ मौजूद। समुद्र दियां तहां च पाए जाने वाले इतने ऐसी किस्म के पौधे ने जिहड़े हेठां तहां विच ही पलदे ने, तहां विच ही खत्म हो जाते। यह तो शरीरक लोड़ा साड़ियां कि असीं उधर झाकने, बाकी बड़ा कुछ इतना है। धरती ते वरतों विच आ रहे सोने नालों दर्जना गुणा ज्यादा सोना समुद्र दियां तहां विच मौजूद है। कितने हीरे जवाहरात ते समुद्र दी तह ने लुका रखे, पर हथ किनू आउंदे ने। आपां इक मोती की गल करी, सिप्पियां समुद्र के कंढियां ते पईयां रुलदियां, उन्हां च मोती नहीं होंदे। जिवें असीं गल्लां बड़ियां करने आ, हर गल का मतलब नहीं होंदा, हर गल विचों कुछ लभण वाला नहीं होंदा। लभदा उस सिप्पी विचों है जिहड़ी खास टिकाणियां उत्ते वड्डे आकार की, जिहदे विच जीण वाला जानवर, उस सिप्पी का जानवर जिहड़ा मोती जानवर जिसनूं कहिंदे ने, वह अपनी लभ तों अपने अंदर आए हुए पानी के कतरे नूं या रेत के दाने नूं अपना लुआब लपेट के मोती बना दे। वह मोती ना केवल सिंगार के काम आया है, बल्कि उस मोती ने कई बार मनुख दियां कई बीमारियां नूं कट के दवा का काम भी किया। भावे गल वखरी, अज दे वैद चुके कीमती सिप्पियां नूं ही पी के ते मोती कह के वेच देंदे, सिप्पी का ही कुछ तो करदे ने। कहिंदे ने भी तां उसे लब तों ही बने है जिस तों मोती बनदा, लेकिन नहीं, सिप्पी सिप्पी है, सिप्पी के अंदर बनने वाले मोती की कीमत बहुत ज्यादा है। राजे महाराजे उहदा मुल पाउंदे सन, पर हर कोई तो उस मोती नूं ना लै सकिया। आखिर किसी ने पानी के अंदर कुद के, पानी के अंदर गहरी छलांग लगाई। अज तो बड़े साधन हो गए, पुराने समयां च सार रोक के टुब्बियां मारदे सन, सार रोक के इन्ने अभ्यासी लोग किन्ना किन्ना चिर सार रोक के घड़ियां बधी और समुद्र दियां तहां विच मोती दी सिप्पी लभदे सन। लभ के लिया के उहदे चों खोज के, फिर हर मोती चों सिप्पी नहीं लभना, किसे किसे मोती चों लभना, किसे किसे सिप्पी विचों मोती लभना, ओनू विन के मुल पाउणा जाणदे सन। यह एक मोती की गल नहीं, भाई साहब तो कहिंदे ने समुद्र च बड़ा कुछ है, पर वो मोती जिहड़ी है ना केवल गोताखोरां की खोज की सिटे की फल की गल है, बल्कि एक होर भी गल है कि जिवें मान सरोवर च कहिंदे ने मोती बहुत होंदे, पर उत्थे किनारियां ते बैठे बगले सिप्पियां ते डडुआं नाल ही कम सारदे ने। हंस दी क्योंकि खुराक मोती है, ओ सिप्पी मोती वाली सिप्पी चुन के लिया है, तह विचों टुब्बी मारदा है, चुन के लिया है, उस सिप्पी नूं खोलदा है और बड़ी औखी खुलदी। यह जानवर ऐसा घुट के मीटदा है अपनी सिप्पी नूं, बड़ा मुश्किल खुलदा है। आम तौर पर इस मोतियां दे जिहड़े खोजी हुंदे ने इहनूं धुप्पे सुट छड्दे ने, वह मर जांदा है सुक के, ते विचों मोती कढ लैंदे, पानी की थुड़ तों मर जांदा, सुक जांदा, नहीं तां सिप्पी खोलणी इक मसला बण जांदा। लेकिन हंस करदा है मेहनत, उस सिप्पी नूं खोल के मोती जानवर के मूँह विचों उहदे कब्जे विचों मोती कढदा है, ते कढ के निकल लैंदा, उहदी खुराक है। ते जे उहनूं सिप्पियां चों डिगे मोती लभ जाण ते उहदे बाहर उह तहां विच जांदा है, मान सरोवर दियां तहां च जा के मोती लभदा है, उहदे बिना उहदा जीवन नहीं। हंस दा जीवन मोती है, इसे तरह सिख दा जीवन नाम है, ते नाम इस नूं मिलदा है बाणी दी खोज विचों। कहिंदे जिवें समुंदर विच सरोवर विच बेअंत पदार्थ पए होए ने, मोती भी उत्थे मौजूद है। हंस गहरी टुब्बी मार के स्वास रोक के औखा होके जरूर विश्वास रखो नेचै प्रसाद पावी, अपने छकन जोगे मोती लभ लिया। कहिंदे जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सोध, पर्वतां विच हीरे भी होंदे मोती भी होंदे ने, पर्वतां नूं खोज के उहनूं खनवारा जिहड़े
खाना पट्टन वाले लोग ने उन्हां पर्वतां नूं पछाण के किथे हीरा हो सकदा किथे कीमती पत्थर हो सकदे खण के मिट्टी छाण के पत्थरां नूं तोड़ के ओह हीरे कढ लिआउंदे ते निरे कढ नहीं लिआउंदे उन्हां नूं चमका के पालिश करके उन्हां नूं ठीक डायमेंशनस दे के ओह संसार च मुल पाउंदे ने उन्हां दा हीरा बड़ी सख्त चीज है ये टुटदा नहीं छेती किते इसनूं तराशना इसनूं एक शेप देनी बड़े समय तो एक बड़ी पुरानी बड़ी चिड़ी कला चली आई बहुत औखे होके कारीगरां ने इसकी शेप बनाते रहे इसनूं सुराख देंदे रहे इनू मुंदरियां विच गहणियां च जड़दे रहे राजियां महाराजियां दे ताजां दा सिंगार बनता आया पर जिन्हां ने पर्वतां विचों कढ के लिया के दसिया संसार नूं कि आ हीरा जे धन है उसकी कमाई कमाल है उसकी खोज कहिंदे ने खणवारा पर्वतां नूं ते जमीन दीआं तहां नूं खोज के हीरा कढ लिआउंदा कहिंदे इसे तरह एक होर भी गल है जंगल दे विच कपूर हुंदा कैंफर हुंदा जंगल च चंदन हुंदा होर कितने फुल हुंदे ने पैदा हुंदे ने ते सुक जांदे ने खत्म हो जांदे लेकिन एक खोजी उठदा है ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਨ ਕਪੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਤਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਂਟ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਚ ਪਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗਲ ਚ ਪਈ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸੁਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੱਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁੰਘਣ ਜੋਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਾਲੇ ਖਣਵਾਰੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਮਰ ਜੀਵਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਉਦਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਮਸਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ

जंत पाए कह संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता विकरणीता सो करता चिंता करे जिन अपाया जग तिस जुहारी साथ।

कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना हुक्म किए मन भावदे रा पीड़े अगे जावना

यकीन है कि जदों तू मैनू अपना बनावेगा ते मैनू नवाजेगा, मैनू माण बख्शेगा। मैं तेरे दर ते आके तेरे अगे पुकार करदा हां कि कृपा कर मैनू।

दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी

धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच बखाना।